जीवन यात्रा शीतलता की मांग, जीवन यात्रा जीवित यही मांग, अलेना पांच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मांग, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पा छेगु जीवनया पला पला निपकीमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: इसको साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन द हैपनिंग कुरु कुरु
0: कनेक्ट टू माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
4: पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका तपाई हाम्रो आफ्नै लोक कला र संस्कृति अब एकै थलोमा कार्यक्रम प्रत्येक दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा।
5: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
6: कलियुग टाइम्स एवरी डे 11 to 12 p.m.

0: Kids 98.3 FM, your companion.
1: Kids FM 98.3 MHz को प्रस्तुति मॉर्निंग टी टाइम हिट्स.

0: हिट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 PM।

0: भाषाया न्याय बुझेचौ मित
1: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: भाषाया न्याय पुसेचौं मेत।
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक। स्टेशन किप्स एफएम 98.3 MHz।
2: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ में रमाइला सेगमेंट्स हरू कार्यक्रम
3: म्यूजिक मज़ा
2: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजे देखि 9 बजे सम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र किप्स 98.3 FM मा।

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा
1: एक फूल झरे रे की भो एक फूल झरे रे की
2: भो नेपाली सुपर हिट्स

0: Life-Changing Quotes. विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईं आधा बाटो कट्नु भइसक्यो। यो भनाइ हो थियोडोर रुजवेल्टको।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी हैं हवाएं, सागर भी लहराए।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3।

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा
1: इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजार
2: Kips 98.3 FM मा गजल संसार
3: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में
2: गजल संसार
3: का खजाना तेरा भी है, मेरा भी।
4: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा।
2: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ में रमाइला सेगमेंट्स हरू कार्यक्रम
3: म्यूजिक मज़ा
2: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजे देखि 9 बजे सम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र किप्स 98.3 एफएम मा।
4: This is Kips 98.3 FM, your companion.
5: Hollywood Golden Hits.

0: every Tuesday 12 p.m. and Thursday 8 p.m.
1: अब ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा 100 एम्पियर 150 एम्पियर 200 एम्पियर का ट्युबुलर ब्याट्रीहरू सुपथ मूल्यमा तपाईँका पुराना इन्भर्टर ब्याट्रीहरूको एक्सचेन्ज सुविधा तपाईँका पुराना इन्भर्टर ब्याट्रीहरू ल्याउनुहोस् र नयाँ ट्युबुलर ब्याट्रीहरू लग्नुहोस् साथै तपाईँको इन्भर्टर युपिएसहरू मर्मत समारका लागि सम्झनुहोला
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
3: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
6: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
7: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
8: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
6: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग एवरी संडे 9 पीएम ट्यूसडे 6 पीएम
9: पहला नशा पहला खुमार
6: स्टेशन Gives FM 98.3 megahertz.
9: नया प्यार है, नया इंतजार.
10: Enjoy the cover version of your favorite songs. Cover Mania at 98.3. Cover Mania at 98.3.
0: Every Monday 5 p.m. and Friday 8 p.m.
11: इन आँखों की मस्ती मस्ताने
12: Kips 98.3 FM ma Gazal Sansar
13: Mujhse milne shama jala kar aaj mehfil mein aaj
12: Gazal Sansar
13: gum ka khazana tera bhi hai mera bhi
1: Har ek shanivar dilki 10 baje
14: Kips 98.3 FM
15: Hollywood Golden Hits

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: यो हो किप्स 98.3 एफएम तपाईं सँगको सहयात्रा
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: Classic Hindi Pop Time at KIPS FM 98.3.

0: This is Kips 98.3 FM, your companion.
1: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat. Enjoy the dance beat. Dance beat. Friday 8 a.m. and Saturday 6 p.m.
2: पुरै एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीतहरू
3: थ्री इन वन
4: एवरी सैटरडे 9 a.m. एंड थर्सडे 6 p.m.
5: राजा मतीवा मती नएवा ने पूछे चंगुटु खेले
6: नेपाल भाषाया न्याही पुसे चौमेता
7: सुथेया 6:30 to 7 p.m. तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
8: केही नौलो
9: रोचक
8: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 एफएम मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
9: हरेक सोमबार बिहान 7 to 8 p.m. र बुधबार बेलुकी 8 to 9 p.m. सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 एफएम मा

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: फेरि छ्याप छ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
1: अब धन्न नमान्नुस्, नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
3: यु क्यान डान्स,
4: यु क्यान सिंग, ऑल यु गॉट टू डू इज
5: जस्ट ट्यून इन
4: KIPS FM 98.3 MHz, your companion, the radio of new generation.
6: What's the secret to success?
7: Simple. Say yes to radio advertising.
6: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
7: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
6: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
5: Stay connected with your favorite station, KIPS FM 98.3 MHz.
7: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
5: And don't stop there, follow us on Instagram and TikTok too. Search KIPS FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
0: सुनौलो याद, सुनौलो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स। KIPS FM 98.3 MHz मा।
9: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे, सोमबार र शुक्रबार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो KIPS FM मा।
10: KIPS FM 98.3 MHz, your companion, your companion, your companion.
11: Touch me. Stop. Rewind. Rewind. Bollywood.